गुरु अर्जन देव जी अपने शब्द विच फरमान कर दे ने, निंदक दी ए निशानी है जदों किसी दा भला हुंदा होया वेखेगा ते दुखी होएगा, ते जदों किसी दा बुरा हुंदा वेखेगा उदों प्रसन्नता विच आंदे, खुशी विच आंदे। वड्डी निशानी निंदक दी ए वे, हजूर कहंदे ने

कीर्तन हर हर गाई, हर दिन रैन कीर्तन गाई है। गरीब नवाज पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज।

रंग चाड़े कर्म खुल गया, कर्म जाग पे। किसी बंदे नूं मालक दी महान बख्शिश होवे ते असीं कह दिंदे आ भई ये भागशाली है, ये कर्मा वाला है। गुरु महाराज पातशाह कहंदे ने कर्म जागे, कर्म खुलिया, पर खुलिया किवें? मालक दा कीर्तन गाउण।

भी ऐसा होना चाहिदा है। जिस पासों जदों भी जरूरत होवे मंगया जावे ते मिल जावे। ओ शाह कैसा के जो जरूरत दे समय कम ना आवे। ते साई फरमान करदे हन कि ऐसा शाह इको एक परमात्मा है, जदों भी उस पासों मंगया जावे ओ मंगा पूरियां करदा है। ऐसे परमात्मा बारे, ऐसे शाह बारे साई फरमान कर रहे हन।

जिस गुर को सद करी नमस्कार, जिस गुर को सद जाओ बलहार, सतगुर के चरण धोए धोए पीवा, गुरु नानक जा।

ओ लोहा नहीं रहिंदा सोना बन जांदा। गुरु नानक दे चरण ऐसे पारस हन, जे इस दे नाल लोहे नो भी शाह देईए तां लोहा भी पारस बन जांदा। सात संगत बोलो श्री पारस पेट पए से पारस। गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती तां उसकी मनोकामना पूरियां हो गईयां। जे गुरु नानक दे दर दी सेवा किसे ने निष्कामता दे नाल कीती तां गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। सात संगत बोलो श्री धन। गुरु नानक सच्चे पातशाह श्यामा दा दीवान सजे है, ताइए एक प्रेमी आके साहब जी दे चरणा विच एक टका मथा टेकया। गरीब बिचारा जितनी बिचारे दी बित सी आके एक टका जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरणा विच रखिया तां साहब जी ने ओ टका लैके अपनी तली ते रख लिया। कोल बैठे सन बाबा श्री चंद गुरु नानक सच्चे पातशाह दे वड्डे सपुत्र। आख्या बेटा श्री चंद दसो साड़ी तली विच की है। ता बाबा श्री चंद जी कहन लगे पिता जी तोड़ी तली ते एक टका ही ता है। हुणे सिख आया इसने तोड़े अगे एक टका मत्था टेकया जो तुसी अपनी मुट्ठी विच रख ले। अपने छोटे पुत्र लक्ष्मी चंद जी कोलों पुछया बेटा तू दस साड़ी तली ते की है। कहन लगे पिता जी एक टका ही तां है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सारी संगत कोलों पुछया सात संगत तुसी दसो साड़ी तली ते की है। सारे नी आख्या गरीब निवाज एक टका ही है। ताइए सेवा करते हुए भाई लैणा जी उत्थे आए का दी पंड सिर तो एक पासे रख के संगत विच जिथे जगह मिलदी सी बैठ गए। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने भाई लैणा जी नूं कोल सद्या आख्या लैणिया इत्थे आ जी गरीब निवाज लैणिया तू दस बई साडी तली ते की है। सात संगत बोलो श्री भाई लैणा जी दे हाथ जुड़ गए बेनती कीती गरीब निवाज मैं कौन हां के दसा के तेरी तली ते की है। नहीं लैणिया दस बई जो वेखे ही ओई दस। ता भाई लैणा जी हाथ जोड़ के कहन लगे गरीब निवाज आप दी तली ते 14 लोकां दी पातशाही है और जे ए मेर परया हाथ तू जिस दे सिर ते रख देवे ना ओ 14 लोकां दा पातशाह बन सकदा है। सात संगत बोलो श्री हां भाई गुरु नानक दे जिसने जिस भावना नाल गुरु नानक नु पूजिया गुरु नानक ने उसनु ओ जा फल देता। इत्थे तां सिदक और प्यार दी गल है। गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर ते जितना कोई वड्डा सिदक दा झोल लैके आएगा उतनियां ही बख्शीशां दी दातां गुरु नानक कोलों लैके जाएगा। सत संगत बोलो श्री इस वास्ते पंजवें पातशाह कह रहे हैं।

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार पाई लेने दा भी, क्योंकि पता सी के आज जो गद्दी है इसते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। सात संगत बोलो श्री, और बिना कसौटी ते परखे होए, बिना परीक्षा लिते होए, आ किवें पता लगे के इस गद्दी ते बैठण दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह मगर मगर संगतां मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया, साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ करां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तो कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करान। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करानु। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन वो चांदी ते डिग पे, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए, फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती, सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरा ढेर लग गया, आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे, चांदी ते नहीं फिसले, ओ सोने दी मोरा वेख के उना दे मन गुरु नानक नू छड़ गए। सोने दिया मोरा चुक के करां नू चले गए। साहब जी फिर खोड़ा जागे गए, फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। ता गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां, साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात चोलियां विच भर के अपने अपने करां नूं चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे पाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए, सोने चांदियां दे ढेर लाए, हीरे जवरातां दे ढेर लाए, आ सारे ही चोलियां भर के घरां नूं मुड़ गए, तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां, कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो चोलियां भर के घरां नूं चले गए हन इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता। सात संगत बोलो श्री, गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठां लै आए लैणे नूं, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तो ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है, उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नू खा। भाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई भाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावा, पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात संगत बोलो श्री, हुक्म मनिए होवे परवान ता खसमे का महल पाए सी।
साहब जी ने भाई लहने नु कोल सदया, अपने हिरदे नाल ला के भाई लहने को अंग से लगाकर अंगद कर दिया, अंगद थापिया और आख्या लैणिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तां मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हैं

जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर, तिसते मुख नहीं मोड़ियो। सहज आनंद रखियो गृह पीतर, उठ उहां को दौड़ियो।

साहिब सिफत सवालियो जिनकी तीसो पार पया कहो नानक करते किया बाता ओ जो किछ

भरपूर रहा तुम सच्चा साहेब सिफत सवालों जिनकी तीसों पार पया कौन

करके तन करके मेरे मालिक मैं तेरे नाल जुड़ जा, तेरी गलवकड़ी विच आ जा, तेरे विच समा जावा, मन करके तन करके अधूरा नहीं, केवल तन करके जुड़िया हो, मन ना जुड़िया हो ऐसा भी नहीं। ते जे मैं ऐसे बहाने करा कि मेरा तो मन जुड़िया है, तन की केड़ी लोड़ है, प्यार तो इस तरह कोई नहीं होता। जिन्होंने प्यार किया है महाराज उन्हों की गल करते, गुरसिखा की गल करते हैं, भगतों की गल करते हैं, संतों की गल करते हैं जिन्होंने प्यार किया, प्यार किया तो फिर भरपूर किया। प्यार अधूरेपन की गल, जब भरपूर प्यार करना है तो फिर तनो मनो प्यार करना है। तो सब देखिए सुहागना पति नाल मिठा बोल दिया ने, ते पति की प्रसन्नता वास्ते तरह तरह के शिंगार भी कर दिया, पति की प्रसन्नता वास्ते चंगे पकवान भी पकाउंदियां, ते पति थोड़ी देर पछड़ जावे घर आउण तो बौरियां होईयां फिरदियां रहिंदियां ने, मन विच भी प्यार है, शरीर करके भी पति की प्रसन्नता लैण वास्ते प्रयत्नशील ने। ते जे कोई कहे मैं तां अंदरों प्यार करदा, बाहरले प्यार की कड़ी लोड़ है, घर बैठा रहे, गुरुद्वारे आउण की थां नहीं, गुंजाइश नहीं, समा नहीं, अधूरा प्यार लैके बैठा होगा अबल तो होना ही कोई। एक ऐसा भी हो सकता है जिहड़ा गुरुद्वारे आके बैठ गया, मन इत्थे नहीं पिया जुड़दा, मन किते संतान ते रह गया है, मन किते मकान ते।

जिन्होंने प्यार करना वो मालक नू छड के प्यारे नू छड के किसी और पासे कानू मुंह कर दे। दासा ने पहावे बिन दरसावे गुरसिख नू भगत नू गुरु प्यार वाले नू बिना गुरु के दर्शन ते गुरु के दर्शन दे भी दो अर्थ ने एक ता दीदार जिहड़ियां अखां नाल करने आपां एक दर्शन संस्कृत फलसफे नू कहिंदे जो गुरु की फलासफी है जे उन्हूं नहीं समझिया ते दर्शन सदा अधूरे रह जाण। सतगुरु नू सब को देखदा जेता जगत संसार दिठे मुक्त ना होवे चिचर गुर शब्द ना करे प्या गुर शब्द ना करे विचार। जिन्ना चिर गुरु के शब्द दी विचार गुरु के बचना दा अध्ययन गुरु के बचना दी कमाई ना कीती उन्ना चिर केवल आए मत्था टेक के तुर गए ता प्यार बढ़ा दूंगा। इस तरह वेखिया गल नहीं बननी अखां नाल गुरु के सोहने दर्शन दिदारे ते मन नाल गुरु के दर्शन भाव गुरु के फलासफी दी विचार गुरमत दी विचार चले मन तन करके इत्थे महाराज कहिंदे ने नहीं रह सकदा। गुरु का सिख गुरु के दोहां दर्शना बिना फलासफी बिना ते देखे बिना गुरु नूं कोई नहीं इहदा गुजारा हुंदा। दासां ने पहावे बिन दरसावे एक खिण धीरज क्यों करे नाम बिहूणा तन मन हीना जल बिन मछली ज्यों मरे। बंदा तड़फदा फिरदा रह जांदा गुरु तो टुटिया ईश्वर तो टुटिया होया नाम तो टुटिया होया बंदा मन करके तन करके बेचैनी विच रहिंदा। जिवें मच्छी पानी चो बाहर कढ के सुट दईए उहनूं कहीए तां केवल शरीर करके तड़फ रही है मन तां इहदा सुखी है कोई नहीं मन सुखी रहिंदा। वह जिहड़ी शरीर करके तड़फ रही है अंदरों भी दुखी ते जेड़ा बंदा अंदरों दुखी है वह शरीर करके भी तकरीबन दुखी हुंदा है। तुसा देखिया बंदे नूं गुस्सा आ जाए कहिंदा मेरा तां तन मन पिया सड़दा कहिंदा और उंज भी चेहरा भी लाल सूहा हो जाएगा हाथ पैर कंबन लग पैणगे। हुण गुस्सा तां मन नूं आया तेरे शरीर नूं की हो गया। और एक दिन ऐसा भी आवेगा डाक्टर कहणगे गुस्सा ना करिया कर तेरा खाणा तैनूं कोई नहीं पिया हजम हुंदा तेरा मैदा काम नहीं कहिंदा क्यों मैदा तां शरीर है मैदा तां शरीर दा केंद्र है गुस्से दा दिमाग च गुस्से दा मैदे नाल की तलक है बहुत वड्डा तलक। क्रोध करन वाला चिंता करन वाला अज नहीं ते कल नूं बहुत वड्डा बीमार हो जाएगा। शरीर ते मन दा बड़ा संबंध है प्यार मन ते तन दोहां तरीकियां दे नाल पुगदा है एक तरीके नाल कोई नहीं पुगदा। महाराज कहिंदे ने जिहड़े टुट गए ने प्यार तों उहनां दा मन ते तन दोवें कमजोर बेचैन दुखी रहिंदे ने। नाम बिहूना तन मन हीना जल बिन मछली ज्यों मरे ते कहिंदे ने मैनूं इहो जी मौत इहो जिहा तड़फणा इहो

तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोलिए, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है। जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने, उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

जमरौत दी जंग विच सिखा ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलवे दियां गल्ला होण लगियां। नलवे तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनों दिन काबल वालू वद दिया देख, पठार सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरी सिंह नलुए दी चढ़त, पठाना नू अपनी मौत दिसन लगी।
1: कई हजार मुल्किया कट्ठा कर शमी खान ने अपने दादे परदादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया।

0: 1837 का सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघा ने पठाणा नू जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया, तलवारा पिड़िया,
1: धरती लहू लुहान हो गई,
0: लोथा ते लोथा चढ़ गईया। गुरु दे सिंघा ने ऐसे हद दिखाए कि गाजिया दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपा दे गोले दागे, रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पाड़ पै गया।
1: हुण महा सिंह अगे 3 काम सन, किले दी राखी करना, कंधा पाड़ पूरना ते पिशोर बीमार पए सरदार हरी सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघा दे रोक दिया रोक दिया। बीबी हरशरण कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल, किले विचो निकल तुरी। रातो रात पेंडा मुका, पिशोर च सरदार हरी सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पुचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया, डौले फरके तलवार दे मुठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है। मैं जान नालों सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघा नू इकट्ठे कर सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही सरदार हरि सिंह नलुए ने सिख फौजा समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारा बरछिया विच्चों मौत दे चंग्यारे निकले, लोथा नू लिताड़ दे सिंगा दे कोड़े अगे वदन लगे, मनुखी सिर मतीरिया वांग पैरा विच रुलन लगे।
1: तरती लाल सूही हो गई, सरदार हरि सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नू एओ टकरे।

0: सरदार हरी सिंह ने फट नू कुट के बन लिया, कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंचदिया ही जत्थेदार महासिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तो ला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वध दी गई,
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी, अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ उते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया, जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वाल तक सरदार हरी सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आख्या,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी, ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया, मेरे पिछों घबराउना नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो, खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वाल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

तब एक मानस दे ही पाए मानस जन्म अमूल पायो वृथा काए गवाओ गुर सेवा ते भगत कमाई तब एक मानस दे ही पाए इस दे को सुरे देव सदे ही पाजू हर किसे

जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल पाई नहीं बाणी, पज ले रे मन सार पानी। अब ना पजस पजस कब पाई, आवे अंत ना पजिया जाई। ए तेरे अवसर ए तेरी बार

या भीतर जो राम बस है साचो ताए पछानो पई प्राप्त मान देहरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया।

गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन किए नरार्थ दाम। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के नरार्थ दाम। फिरत बोते जुगहारे हो, फिरत बोते

मेरे काम लग जा, मैं तेरे काम लग जाना। मैनू तू अपना काम दे रहे, ते मेरा काम तू ले। संसार च ऐसा चल जाना, एक दूसरे दे काम आना, जिस काम की जिदी जिनी समर्था हो। बड़े पुराने समय तो बंदा काम का लैन देन करता रहे, जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता, जेड़ा कर सकता है उनू जाके बेनती करा तू ये कर दे, इहदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वो मैनू दस। एक दूजे दे काम आ सकी। संसार च भी ऐसा वरते है, पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा कीता है कि मेरा काम कर सकेगा, ओदी समर्था थोड़ी होने करके कई बार निराशा का मूंह भी वेखना पिया होगा। महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर काम आउन दी, एक दूजे का काम करन दी सांझ पाउनी है, तू वाहगुरू नाल पा के वेख। मालिक तू जो चाहे कर सकना है, तेरी समर्था महान है, करता पुरख जो है सब कुछ कर सकना है, ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैथों कुछ भी नहीं हो सकता। जब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा, अरदास तो हो सकती है। और सच्ची गल जानना, अरदास च खड़े हो जाना ही रब का काम है। ओदे काम लगन का मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए, ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे विच। और जिस वेले साडे हथ जुड़ जाण, मस्तक न्यों जाए, इहदे दो अर्थ हुंदे ने। हथ जुड़ जाण का मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना, इन्हां हथां ने कुछ नहीं कर सकना, इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं, यह हथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने, इन्हां हथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन। आप करता पुरख हो, इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना, यह हथ बज गए, यह हथ तेरे सामने जुड़ गए, इन्हां तो कुछ नहीं होना। एक तो दोवें हथ बन के सत्कार हुंदा है ना, किसी दूसरे का अभिवादन करना हो, आदर करना हो, भी हथ बनने। लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना, बल्कि जिसले मत्था टेक देने हैं, इहदे पिछे भी दो गोज भाव ने। एक तो यह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैन आया, लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने आ सी, मत्था टेकने आ पातशाह, इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं, इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जाना, मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता, मेरे सोचने च बड़िया भुलां ने, मेरी थां सोचो भी तुसी, मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौंत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी, ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास च जोड़ दो। मैं तुहाडी अरदास च जुड़िया हां, अरदास अर्ज दाश्त बेनती कर रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं, मैं केवल अरदास च जुड़िया हां। एक ते जुड़ जाए ना बंदा, साहिबा ने विश्वास दृढ़ कराया, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। ये वखरी गल है, मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है, जुड़ना ही औखा है, अरदास जुड़ जाना ही औखा है, नहीं जुड़े रहा तो ये वास्ते भी अरदास करिए, बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए, तू मैनू अपनी अरदास जोड़ लै, अपनी भगती नाल मेरे लिए भी एकाग्र करने की समर्था मैनू बख्श, फिर मैं अरदास च लगा होवांगा, हथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा, भगती च लगा होवांगा। प्रभु का होर कोई काम साथों थोड़िया नहीं पिया, वाहगुरु का कोई काम साडे गोचरा नहीं, प्रभु केवल प्यार चाहुंदा साडे कोल, सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा। ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए, अरदास करनी आ जावे ना, फिर की हुंदा है, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। एक तां हुंदा ना काम हो जाना, काम कर लेना, काम नबेड़ लेना, ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना, पहला तो करन तो पहला ही थड़कदा हुंदा है, घबराया हुंदा है, डगमगाउंदा है, ते जे किते काम हो जाए हंब के बह जांदा है, पसीने पूंजदा है, सजना मित्रा नूं कहिंदा है शुक्र करना काम निबड़ गया, बंदा केवल नबेड़ सकदा है। लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं, सतगुरु कार्ज सवारदा है। वड्डी वड्याई अचरज शोभा, उस कार्ज विच शोभा हुंदी, मान हुंदा है, सत्कार हुंदा, उस कार्ज दी वड्डी वड्याई हुंदी,
कारज आया रासे नानक कौ गुर पूरा भेटियो सगले दुख बिनासे जदो सतगुरु कारज करना आ जावे उसले कारजा च शोभा हुंदी ते अरदास करन वाले दा मुख उजला हुंदा ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦੇ ਆ ਬਲਕਿ ਉਹ

सतगुरु कहिंदे ने देह सदा नहीं रहनी। जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां इदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

ज्ञाने की बढ़नी मनो हाथ ले। शत्रु कहने ज्ञान दा झाड़ू मन दे हाथ विच पकड़ लै ते अपने अंदरों ईरखा द्वैत चुगली निंदा बखीली ए सारी हूंज के बाहर कढ़ दे ताके तेरे हिरदे च टिक जावे सतनाम श्री वाहे गुरु।

संगत कदूरत परे मन वाला बंदे नूं भी अपने वर्गा बना लेंदी। चंगा बंदा संगत विच आवे, गुरु पातशाह दे दर्शन करे, ओह तां चंगा ही है। तां जे माड़ा भी कदे आ जावे ते ओह भी साहिब दे चरण परसे, गुरु का कीर्तन सुने, संगत दी सेवा करे,

लेकिन मेरे पंचम पातशाह जी आखते ने ए मेरे वाहगुरु मैं गरीब हाँ तेरा आसरा है। संसार विच जदों विचरदा इंज लगदा जिवें मैं डुब रहा हाँ ते जदों तेरे कोल आउना तेरे दर्शन करना मेरे मन नूं कोई धीरज आ जांदा है। ते दर्शन दा मतलब ये है कि पातशाह दी बाणी हिरदे विच वसे दिलां विच वसे तां ही दर्शन दा, क्योंकि पातशाह ने आख्या सतगुर नूं सब कोल वेखदा जेता जगत संसार गुर डिठे मुकत ना हो वही जिचर शब्द ना करे विचार। जिन्ना चिर गुरु का शब्द हिरदे विच वसेगा नहीं दर्शना नाल गल नहीं बनती। सो आओ पातशाह आखदे ने मेरे मन विच गुरु की बाणी वसे ते गुरु अर्जन देव जी आखदे प्यार नाल आपां सारे रल मिल के गुरबाणी पढ़िए कोई रसना खाली ना रहे।

किन्हीं किया परवृत पसारा, किन्हीं किया पूजा विस्थारा, किन्हीं निवल भुयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा, किन्हीं ग्रह

पंडित सासत सिमृत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भजमन मेरे तर भव जल तू तारी सन्यासी विभूत लाय दे सवारी पर त्रय त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस तुम्हारी खत्री कर्म करे सूरत तन पावे सूद वैश पर कृत कमावे मैं मूरख हर नाम छड़ावे सब तेरी सृष्ट तू आप रया समाई।